इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिड़ार 90.4 FM हर दिल।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।
2: गर्ल्स सुपर कप, इंटर स्कूल गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सोपोर इन कोलैबोरेशन विद सोपोर पुलिस एट खुशहाल स्टेडियम सोपोर फ्रॉम 31st of August 2026 onwards. Under the theme, Women Empowerment, let's celebrate Nari Shakti. Participating schools, SRM Welkin, Sanctorum Public School, Gulzar Memorial Educational Trust, Valley Public School, Government Girls Higher Secondary Sopore, Apex Public School, MET Higher Secondary School Sopore, Rehmat-e-Alam Educational Trust Sopore. Tournament is supported by New Light Restaurant and Bakery Sopore, Snowdrop, Baramula. Digital Media Partners, Valley Sports Crown. Official Radio Partners, Radio Chinar 90.4 FM, हर दिल की धड़कन, रेडियो चुनार।

Assalamu alaikum, and a warm welcome to all of you. दोस्तों हॉट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम मोड लो हाजिर है और जेजी लेकर शो वो सब

दोस्तों रेडियो चैनल की हॉट फ्रीक्वेंसी पर एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप। मैं हूं आपका साथी जागजी सर। फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना अपने रेडियो चैनल के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को। गूगल पर सर्च मारे या सर्च करें रेडियो चैनल 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन। फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर साथी फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से। ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। जी हाँ, मजीद मालूमात के लिए लॉग इन टू www.radiochannel.com। मैं हूँ जॉक्सूस, मेरी जान से रिहक धड़काते रहो।

0: kommer der, ja.
1: Radio Chennai, Radio Radio Chennai, weather update, weather update.
2: हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 FM ब्रदर आज का वेदर

जूझ रहे हैं जो नेपाल में अभी रिसेंटली हुआ, या जिस थ्रेट के चलते लोग अभी भी संभल नहीं पा रहे हैं या खुल के जी नहीं पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज जो भी माउंटेन रीजन्स वगैरह है, बादल फटने से कल पहलगाम में भी खासा दिक्कत लोगों को पेश आई थी. लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड और उस अल्लाह बारे ताला से हम यही दुआ करें कि सबकी ज़िंदगी जो है आसान हो जाए और सबके जो है दिक्कतें जो हैं ख़त्म हो जाए और सही रास्ते खोल दे वो. मौसम की बात करें तो आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस और सूरज और बादलों के बीच में घमासान चलती रहेगी. स्पार्कली क्लाउडी फॉर टुडे. यू इंडेक्स वीक पर ह्यूमिडिटी 77% जीरो पर है. विंड स्पीड विजिबिलिटी 4 किलोमीटर 65 पर हुआ आज का सनराइज, 657 पर होगा आज का सनसेट. जी हाँ, गेट इन टू यू वन ऑफ माई फेवरेट डीजे ट्रैक. दिस इज डीजे एसिड रेट्रो. मैं हूँ जॉक्स. यू आर ट्यून्ड इन टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर. वॉल्यूम बढ़ाओ, सबको सुनाओ, हर दिल की धड़कन को जोरों से धड़काओ. मजेदार शो, व्हाट्सएप से धड़काते रहो.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: जूस। कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे।
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी व्हाट्सएप
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।

to Radio Channel 90.4 FM Viral on WhatsApp. जी हाँ, कहत ज्ञानी और लोगों ने भी ये बात है मानी कि जानी वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप पर आइए आज बात करते हैं आर्मी के एक शहीद जवान बाबा हरभजन सिंह की। जी हाँ, ये पोस्ट वायरल रहा जब लोगों ने इसके बारे में जाना, और जानने वाले ये जानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह हु लॉस्ट हिज लाइफ व्हाइल ऑन ड्यूटी इन ईयर 1968, जिनकी लेगेसी आज भी जिंदा है इन एवरी सोल्जर्स हार्ट व्हाटएवर ऑन ड्यूटी, और इन्हें आज भी ऑनर किया जाता है एट नथुला। और वही अगर हम बात करें तो ये माना जाता है दैट ही इज ऑलवेज इन यूनिफॉर्म, क्योंकि आज भी सोल्जर्स को इनका स्पर्श, इनकी मौजूदगी महसूस होती है, और आज भी कई सारे लोगों को बाबा हरभजन सिंह दिखते हैं ड्यूटी बजाते हुए। कहा जाता है ही इज काइंड ऑफ ब्रेव सोल्जर दैट हु नेवर लेफ्ट हिज पोस्ट, और उनकी शहीद होने के बाद कई सदियों तक आज भी उन्हें महसूस किया जाता है, देखा जाता है कि वो आज भी अपनी पोस्ट को गार्ड कर रहे हैं। जी हाँ, ये भारत के सपूत ही हैं जिनके दिल में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत है। टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम ऐसे वीर जवानों को सल्यूट करता है। मैं हूँ जॉक्सूस, आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 एफएम, सिटी हक्ट दरगाह।

0: मैं हूँ आरजे सूरज।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन।
4: दोस्तों हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो व्हाट्सएप शो में आज का थॉट ऑफ द डे। जी हाँ, आज का थॉट कहता है शर्मिंदगी है हमें कि हम मिले तुम्हें, शर्मिंदगी है हमें कि हम मिले तुम्हें, तुम सरबसर खुश थे मगर गम मिले तुम्हें। फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन सिहत धड़काते रहो।
5: याद आ रहा है
6: तो चले गए

0: कुछ न रह सका जहां, वीरानियां तो रह गई, तुम चले गए तो क्या, कहानियां तो रह गई।
1: एक ही सप्ताह जाने
2: जाने इस वक्त तू कहां होगा।

मगर जिंदा हूँ, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए हैं। पूछते हैं आप अच्छे तो हैं, पूछते हैं आप अच्छे तो हैं, जी मैं अच्छा हूँ।

0: Zeus, بره کن آیا بد بوی فریدیو کن آیا آرچ زوز کن آیا
1: زوز زوز زوز
2: दिल की धड़कन धड़का रहे हैं आप और हम मिलकर रेडियो चला सही है मेरे यार। मैं हूं जॉक ज्यूस, आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो और वो सब जो मैं टॉपिक बताने से पहले बता दूं आपको, याद दिला दूं आपको कि आपने ही धड़काना है हर दिल की धड़कन को, क्योंकि धड़काते हैं आप और जरिया है आपकी है हर दिल की धड़कन धड़क रही है। अगर आपकी भी उंगलियां भड़क रही है तो उंगलियों से दबाइए बटन, जी हाँ मैजिकल बटन, जो जोड़ते हैं आपके दिलों के तार हमारे दिलों से। 8899 9999 0499 0494 इज द नंबर। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। जी हाँ।

पर डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मिलूंगा ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो के नाम से ही आप सर्च कर सकते हैं जॉक ज्यूस JOCKEUS। और आज का टॉपिक, जी हाँ, द न्यू एज वुमेन। अगर हम बात करें कल्चरल एवोल्यूशन की, बात करें हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स की, बात करें अल्टरनेटिव स्पिरिचुअलिटीज की, बात करें शिफ्टिंग डायनामिक्स की, आज हम बात करने वाले हैं आज की नारी मिलेनियल एंड जेंजी विमेन की। वैसे सब कहते हैं कि जेंजीज और मिलेनियल्स के साथ काम करना, भैया कितने ही देखते हैं, इंस्टाग्राम ने भी आप पर देखा होगा, रील्स पे रील्स बनाई जाती है जहां पर जेंजीज कन्फ्रंट करते हैं मिलेनियल्स को, लेकिन टुगेदर दे आर डूइंग वंडर्स। और आज की नारी, जी हाँ, सब पर बारी। और इन्हीं नारियों से आज, वैसे मैं तो रोज़ बात करता हूँ, हमारे यहाँ जेंजीज है, दीवा है, असरा है, और भी जेंजीज यहाँ पर गेस्ट आते रहते। आपको नहीं पता भैया, फॉलो शेयर सब्सक्राइब कर लो रेडियो चैनल के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को, क्योंकि बहुत कुछ नहीं, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। और अगर सबसे सब कुछ जानना चाहते हैं तो www.radiochannel पर लॉग इन ज़रूर करें। तो याद रखिए आज का टॉपिक, अरे यार आज का टॉपिक है द न्यू एज विमेन। और आज की नारी की बात करेंगे, फैक्ट से लेकर एस्ट्रोलॉजी, साइंटिफिक रीजंस, रिसर्च सब पहुंचाएंगे आप तक, क्योंकि आज का टॉपिक, कितनी बार बोला मैंने, द न्यू एज विमेन। रेडियो शो 90.4 FM, मैं हूँ जॉक ज्यूस, मजेदार शो, व्हाट्सएप आप बने रहें, सुनते रहें और दिल की धड़कन को धड़काते रहें।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: आ रहे हैं यलगार घराने के दुबई से अमानत अली।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: Kommer jag.
1: Tjus.
2: इस रीजन से हर दिल के धड़कन एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप। मैं हूं आपका साथी जॉक ज्यूस और आज बात हो रही है न्यू एज वीमेन की। देखिए कुछ ट्रेड्स, कुछ फीचर्स, कुछ कंडीशंस, कुछ माइंडसेट्स जो इन्हें बनाते हैं अलग फ्रॉम दैट ट्रेडिशनल थिंकिंग एंड और उन स्टीरियोटाइप से। जैसे कि मैंने कहा आज की नारी सब पर बारी। हमारे साथ जुड़ी हैं शबनम, लिखती हैं शबनम, सर आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है, मेरा मन कर रहा है कि मैं माइक पर आकर आपसे बात करूं। यहाँ बातचीत तो होगी और आगे शबनम लिखती है कि आज की नारी कुछ भी नहीं सोचती, बस ये है कि अपने पंख खोल कर उड़ना चाहती है। गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ दैट फीमेल आउट देयर जो कि इस माइंडसेट के साथ जीती है कि उन्होंने सपनों की उड़ान भरनी है। यहाँ वही अगर हम आपकी बात करें तो 8899904904 इस द नंबर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। और अगर हम बात करें जेंजीज और मॉडर्न मिलेनियल्स की तो उन्होंने रिलेशनशिप्स का जो थिंकिंग है वो चेंज किया है और मैरिटल स्टेटस से लेकर करियर सब के बारे में उनका अलग ही विचार है। यहाँ अगर हम देखें तो मॉडर्न वुमेन रिजेक्ट कर रही है नॉर्मेटिव टाइमलाइंस जैसे शादी का प्रेशर, बच्चे होना, या अगर हम देखें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करके जिंदगी को आगे बढ़ा रही है आज की फीमेल। और इसकी वजह जाहिर सी बात है डिजिटल कम्युनिकेशन, ग्लोबल मीडिया और कॉपरेटिव सेक्टर्स, अगर हम देखें तो इन्हीं फैक्टर्स पर फोकस किया जा रहा है कि लाइफ पार्टनर अगर हो तो भैया चॉइस का हो, वरना हमारी चॉइस कुछ और ही है। और स्टडीज ये भी रिवील करती है कि आज की जो युवा नारी है, आज की जो मॉडर्न मिलेनियल्स है या जेंजीज है, वो नॉन ट्रेडिशनल पोस्ट मैरिटल सेटअप्स पर बिलीव नहीं करती। और अगर हम देखें तो जो रोल्स सेट किए गए हैं एक फीमेल के लिए कई सदियों से, दशकों से, तो वो उसे भी कहीं ना कहीं नकारती हुई नजर आ रही है। बट पॉइंट इज, क्या ये सही है या गलत? जी हाँ, मिक्स रिएक्शंस है, कुछ कहते हैं गलत, लेकिन अगर हम आज की फीमेल्स, न्यू एज फीमेल्स की बात करें, दे आर लाइक यही तो है जिंदगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, बहुत सारी फीमेल्स, बॉस ने हड़का दिया, जॉब छोड़ दिया, यहाँ पर ये नहीं मिला तो रास्ता बदल लिया। आज की नारी अपनी टर्म्स पर जीती है। एंड गॉड ब्लेस दीज यंग किड्स, दे आर मेकिंग दिस वर्ल्ड ब्यूटिफुल एंड बेटर। रेडियो चुनाव 90.4 एफएम, बातचीत जारी है, बने रहें, सुनते रहें, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें। मैं हूं जॉक्स, बेबी स्नेह, धड़काते रहो।

दोस्तों, रेडियो चैनल 90.4 एफएम एंजॉय कर रहे हैं मस्तर शो। व्हाट्सअप, मैं हूं आपके साथ ही जगजीत। व्हाट्सअप शो में अगली पेशकश टिकटॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज, हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल आप तक पहुंचाएंगे। जी हां, ढेर सारा प्यार, बॉलीवुड से खबरें और टेक न्यूज आप तक पहुंचाई जाएंगी। आप बने रहें, सुनते रहें, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: News.
1: Kom igjen, ja.
2: Bollywood News.
3: The story is on 90.4 FM show was a voice of sugar segment, Bollywood News.
2: Bollywood News. Bollywood News. Bollywood News. Bollywood News.
3: Bollywood News में आइए करते हैं राजदार राज गर्ल की बात जिसने किया अपने फैंस का थैंक यू. जी हाँ, मैं कहा बात कर रहा हूँ मालिनी शर्मा की, जो बड़ी मशहूर और मारूफ अदाकारा रही है. जब भी राज मूवी की बात होती है और उसके बाद अचानक से गायब हुई, लेकिन नॉर्मल से निकल कर वो आई सोशल मीडिया पर, तो फैंस ने फिर से गले लगा लिया. मालिनी शर्मा, जिन्होंने राज मूवी में अदाकारी करके लाखों दिलों पर राज किया, उन्होंने शुक्रिया किया अपने फैंस का, क्योंकि 644 से 28,000 फैंस उनसे जुड़े हैं सोशल मीडिया पर और इनके इंस्टाग्राम का अकाउंट बढ़ चुका है 28K हो चुका है. हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन, और भी खबरें बॉलीवुड से पहुंचाई जाएंगी. आप बने रहें, सुनते रहें, धड़काते रहें.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: कौन आया?
1: बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़।
2: सो रेडियो चैनल 90.4 एफएम बॉलीवुड न्यूज़।
1: बॉलीवुड न्यूज़।
2: बादशाह ने अनाउंस कर दिया अपना डिवोर्स, कंफर्म्स सेपरेशन फ्रॉम वाइफ थ्रू हिज ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स। जी हाँ, बताया जाता है कुछ महीने चली है मैरिज, और इसका जो एक्चुअल रीजन है पता नहीं, बट म्यूचुअली इट इज डन एंड दे हैव डिसाइडेड नॉट टू लिव टुगेदर। फैंस की मिक्स रिएक्शंस और ये नई कंट्रोवर्सी किस ओर बैठेगा, उठ हम तो पहुंचाते रहे आप तक। फिलहाल बादशाह के कुछ ट्रैक्स आपके लिए, और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन, मैं हूँ चौकसी, तिरका तेरा

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Kommen wir her.
1: Original gehört jetzt Freakens über Master Show, was auf Joker Segment, TikToks. जिन्हें टिकटॉक्स में आइए बात करते हैं चाइनीज फार्मर्स की, जिन्होंने 25 एकड़ सेसमे क्रॉप बर्बाद कर दिया। अब ये किस्सा इसलिए मशहूर हुआ और टिकटॉक्स में आ गया क्योंकि 25 एकड़ का सेसमे क्रॉप बर्बाद किस वजह से हुआ? इस वजह से हुआ कि चाइना, जो टेक्नोलॉजी में बहुत ही विकसित बताया जाता है, उन्होंने फार्मर्स ने एआई से पूछा कि कौन से केमिकल्स हम इस पर स्प्रेड करें ताकि कीटाणु से और फसल जो है अच्छी रहे, कीटाणु से बची रहे। और जब एआई ने रिकमेंड किया तो सारी फसल जल गई। अब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है भैया इतनी भी विकसित नहीं हुई जितना हम लोग समझते हैं, और यही मैसेज जो है चाइनीज फार्मर्स दे रहे हैं दुनिया को। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM गेट इन टू यू दिस लवली ट्रैक फ्रॉम मूवी कपूर एंड सन्स। रेडियो चुनाव की हॉट फ्रीक्वेंसी के साथ नाचते रहिए, थिरकते रहिए। मैं हूँ जॉस, धड़काते रहो।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: Kom nou ja.
1: Yalnız o vakit hocalayak yavaş geliye lüce yapsı. Cazıp. Ya इजाजत लेने से पहले बता दूं आपको याद दिला दूं आपको कि ये जो वार्तालाप है इसे आप जारी रख सकते हैं इंस्टाग्राम पर सर्च करें मिलूंगा जॉक ज्यूस के नाम से JOCKXEUS या आप गूगल कर सकते हैं जॉक ज्यूस मेरे सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हम कनेक्ट कर सकते हैं कल फिर से मुलाकात होगी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो जुनार सुनते रहिए प्यार देते रहिए हर दिल की धड़कन को तिड़काते रहिए We meet again. Keep your heads high, walk tall, and always remember that I love you all. Bye bye, Tata. Take care. Masalama.

0: अरे सावन की घड़ा चल अपना चला चल अपना चला जल ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ
2: दीवाना है ये
1: दिल की बात साहिल के साथ ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Çınar Beats ve Darce Diva only on Radio Çınar 90.4 FM. 90.4 FM.
1: Hi, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Dhar Chediba, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: करण सिंघानिया जो कि आज बहुत बड़े पॉप स्टार हैं, उन्होंने ये गाना पहली बार

चली नहीं मैं आ रही हूँ. शो शुरू हो चुका है. हंगामा जहाँ होता है भरपूर ड्रामा एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन क्या बजेंगे लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है.

जो होना है वो तो होगा ही, क्योंकि आज 4 बजे तक एकदम आपका और मेरा जो साथ रहेगा, साथ साथ में जो बात हो गई है, एकदम मजा आएगा. और बहुत सारी चीज़ें हैं, अपडेट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, रेलवे अपडेट से लेकर जो भी ट्रेंडिंग है उसके बारे में बात करते हैं. उसके अलावा जो शो में जो पर्टिकुलर टॉपिक होता है, और आज का टॉपिक बहुत ही खास है, और वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, कुछ ट्रैक से बाद बात करेंगे उस बारे में. बट फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स, और आते आते ही प्ले होता है कुछ खास, कुछ क्रेजी. देखिए आज का जो गाना है अजनबी, वो अजनबी, ठीक है. अभी हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे अजनबी लोग, इतने ऐसा लगता है ना जैसे उनको आप बरसों से जानते हो बट कभी मिल नहीं पाए. बट ऐसा कभी कभी होता है ज़िंदगी में, सच में होता है, ट्रस्ट मी, होता भी है. और हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद मे बी देर इज़ समथिंग न्यू फॉर द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, या कुछ ऐसा हो सकता है, कोई नया दोस्त, या किसी को तो इसी पैटर्न में यू मीट योर पार्टनर, यू नेवर नो. लाइफ इतनी अनप्रडिक्टेबल है. आज के इसी थॉट के साथ एकदम, देखिए बाकी लोग अजनबी होंगे आपके लिए बट हम तो अजनबी नहीं है. हर बार 2 से 4 मिलते हैं. आज वेंसडे है, यानी कि रेडियो गर्ल्स था, रेडियो गर्ल्स के बाद हंगामा है, और सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM. बस यूं कहिए और यूं वापस आई सच्ची.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Adi, welcome back to the show. Hai hangama jahan hota hai bharpoor drama, entertainment information aur entertainment ki baat kare. So we talk about a lot of stuff, jaise ki kya trending hai, log kya dekhna pasand kar rahe hain, relay, repost, kya ho raha hai social media ki jo is sabzi mandi hai wahan ho kya raha hai. Chahe hum YouTube ki baat kare, Instagram, X, Facebook, log kya dekh rahe hain, lip syncing, dance reels. Aur aaj ka ek aisa track hai jo actually not my thing, but kya kare, logon ko pasand hai aur 10 साल पहले रिकॉर्ड रिलीज किया हुआ ये ट्रैक अभी भी ट्रेंड कर रहा है. एंड समहाउ सोशल मीडिया इज सच अ क्रेजी प्लेस कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है वायरल. तेरी की लग दी, देखिए मैं आपकी तो होस्ट हूँ, ऐसे कभी कभी दोस्त भी बन जाती हूँ. अभी के लिए फिलहाल बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM. मैं हूँ आरजे असरा, मैं बस यूं कहीं और यूं वापस आई.
1: डोंट फॉरगेट.

0: पानी, पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
3: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
3: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
2: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
3: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन
3: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। जो हंगामा है और आज का टॉपिक हमारा काफी प्यार भरा, ओह माय गॉड, प्यार प्यार प्यार प्यार और कंपैटिबिलिटी, यानी कि प्यार जरूरी है या कंपैटिबिलिटी जरूरी है। और अभी तक हमने बात की कि क्यों है कंपैटिबिलिटी इम्पॉर्टेंट, अपनी एक वैल्यू जो है वो कंपैटिबिलिटी की इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों है एक रिलेशनशिप में। और ज़रूरी नहीं है कि इट्स जस्ट अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स, इट्स अबाउट एनी रिलेशनशिप। कोई भी जिंदगी में इतने सारे बॉन्ड्स होते हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, या आपके रोमांटिक जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी है, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो रिश्ता, आपका जो रिश्ता है वो कंपैटिबल होना, आपके बीच में जो कंपैटिबिलिटी है, आपके बीच में जो सिमिलैरिटी है वो होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा प्यार की बात करें तो प्यार अगर कहीं पे कंपैटिबिलिटी है तो प्यार ऑटोमेटिकली जेनरेट हो जाता है, बिकॉज इट्स वेरी, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन आल्सो, एंड इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन कि जब आपको अपने जैसा कोई इंसान मिलता है तो यूजुअली यू डू गेट अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन या यू डू गेट अलॉन्ग विद दैट पर्सन। आपको काफ़ी अच्छा लगता है जब आप किसी ऐसे इंसान से बात करते हो कि भाई ये तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। वो इसलिए लगता है क्योंकि आप भी वैसे होते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोगों से बात करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे टू सोशलाइज इन पर्सन, कि आप इन पर्सन लोगों से बात करें। सिर्फ सोशल मीडिया, जब डिजिटलाइजेशन तो काफी ज्यादा हो चुकी है, बट जब आप फोन, ओवर द फोन, ओवर द टेक्स्ट लोगों से बात करते हैं तो वहां से उतने अच्छे जो रिलेशंस हैं, क्योंकि आपको टेक्स्ट पे समझ नहीं आता, टोन है, फोन है तो चेहरा समझ नहीं, दिख नहीं रहा, फेस टाइम है या वीडियो कॉल है, तो वहां पे भी एक वो धरार तो रहती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम टू टाइम यू मीट योर फ्रेंड, your family, you take time for your people, the people you love। और रही बात compatibility, वो दो इंसानों में या दो group of people और whatever the condition is, वो धीरे धीरे ही बढ़ती है। और उस time को you have to give that time to yourself, to the person on the other ground, and you have to be there for the moment।

बात करें, चिल करें और हमसे भी बात करिए, क्योंकि विचारों से बढ़ता है प्यार, तभी तो हम हैं रेडियो चिनार। मेरे यार सही है सब कुछ, और चार तक आपका और मेरा साथ रहता है। कुछ ही देर बची है, कुछ ट्रैक्स प्ले करेंगे हम, बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4 FM। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ये ट्रैक और इसके बाद भी बहुत सारे ट्रैक्स। मैं बस यूं कह रही हूं, वापस आई।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

दूबा खतूबा आने वाली नहीं है, क्योंकि मैं आज अस्ट्रा आ चुकी थी बराबर 2 बजे. 2 से 4 तक हमने आज शो किया, 2 से 2:30 तक रेडियो गर्ल्स था, 2:30 से लेकर अभी तक मजे में ड्रामा हंगामा था. और अभी की बात करें तो 4 बजे वाले और आपका और मेरा साथ यहीं तक था. और अभी जा रही हूँ, कल वापस आऊँगी करने आप सबको एंटरटेन. आज के लिए बस इतना ही. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम. कल वापस आऊँगी ऑनेस्टली 2 बजे, एकदम चिल करेंगे साथ में. और ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहिए. और अभी के लिए बस इतना ही. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड आउट.

Jar Beats with Harshadeva, only on Radio Channel 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Jeremy. Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: हाय, मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्द
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम। दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चिनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
3: हे मैं हूँ आरजे समानिया।
4: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
5: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर

दिन, चैन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ,

कष्टी कष्टी जी। चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली,

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: के चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

मैंने खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया बाजू।

0: बंदी मुट्ठी लाख की और
1: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
0: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।